0: रेडियो हिमशिखर 103.3 मेगाहर्ज।
1: यस खबर परिक्रमाका साथमा इलेक्ट्रिक स्कूटर तथा इलेक्ट्रिक साइकल सुपथ मूल्यमा पाइने सोरुम दमक इन्टरप्राइजेस गोर्खा डिपार्टमेन्ट अगाडि, फोन नम्बर 98160913।

0: आयो
1: रेडियो हिमशिखर 103.3 मेगाहर्ज।
2: यस खबर परिक्रमाका साथमा इलेक्ट्रिक स्कूटर तथा इलेक्ट्रिक साइकल सुपथ मूल्यमा पाइने सोरुम दमक इन्टरप्राइजेस गोर्खा डिपार्टमेन्ट अगाडि। फोन नम्बर 9816091013।
3: मामा तयारी छ, जाऊ मामासँग हाइकारो माइलो।

जा ओ धीरे धीरे सपनों की सुनी सुनी दुनिया बसा जा ओ चोरी चोरी चुपके से आंखें मेरी आंखों में समा जा।

0: 天啊，星星अपने प्यार से देखा मुझको, देखी आपने।
1: मैंने कहा
0: जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बनी गई, जाने क्या तूने कही,

क्या है ये मुझको नहीं थी खबर, प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों मेरा दुश्मनों की तरह, मैं दुश्मन।

0: जय शंकर जय महादेव
1: जय जय शंकर जय
0: महादेव
1: जय जय शंकर जय महादेव
0: जय जय शंकर जय महादेव
1: जय जय शंकर जय